क्या नो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो हाँ भी अपनी रेडियो दोस्त रुचि का हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने वहाँ सारे यहीं बनी रहा रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडित।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो कुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते?

0: पेड़ की।
1: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
2: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
3: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
2: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
0: अब्बा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
0: अब्बा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
4: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
5: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: ए, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तुमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना देना।

0: OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 敲开的
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना। ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के श्रोताओं 9 बज गए हैं और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो लीजिए, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो गई है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। सभी प्यारे श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जग चुके होंगे, अपने अपने काम की तरफ रवाना हो चुके होंगे। कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे होंगे और कुछ लोग जो है वो अपने कार्यस्थल पर पहुँच गए होंगे, और जो हमारे घर में लोग हैं वो ज़रूर अपने काम कर रहे होंगे और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुन रहे होंगे। तो सभी श्रोताओं को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे मूड के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम भी करेंगे एक अच्छे से विचार के साथ। अपने संघर्ष से मत घबराओ, यही वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। बिल्कुल, हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है, एक नया दिन हमें भगवान द्वारा दिया जाता है। क्योंकि श्रोताओं, बहुत सारे लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, या कौन सी सुबह हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आज का दिन हमने देखा है तो उसके लिए परमपिता परमात्मा का हमारा शुक्रिया अदा होना चाहिए, और एक नया दिन, नई शुरुआत हमें मिली है अपने हर काम को करने के लिए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमने सोच के रखे होते हैं कि हमने करने हैं। तो एक दिन आपको मुबारक हो। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में इस विचार के साथ हमने शुरुआत कर दी है कार्यक्रम की, और प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो भी लेकर पहुंच गई हूं मैं स्टूडियो में। तो चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं पहले एक प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद हम आपके साथ करेंगे बातचीत। दुश्मन फिल्म का ये गीत श्रोताओं आप तक पहुँचाया जा रहा है उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज़ दो हमको हम खो गए। बिल्कुल, हम भी आवाज़ दे रहे हैं अपने श्रोताओं को कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। वैसे तो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, लेकिन जो श्रोता अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें हम यही कहेंगे कि जल्दी से आ जाइए और रेडियो सेट ऑन कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला शुरू हो गया है, जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सुन सकते हैं। तो हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ से जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा का प्यार भरा राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं जानकारी मौसम की। तो मौसम की बात अगर हम वैसे करें जो हमें दिख रहा है, जो हम फील कर रहे हैं, खास करके धर्मशाला में तो आज धूप खिली हुई है, लेकिन हाँ इतनी गर्माहट जो है वो धूप में नहीं है, क्योंकि पिछले एक दो दिन में जो हल्की फुल्की बारिश पड़ी है उससे थोड़ा सा मौसम में ठंडक आई है और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के द्वारा अगर हम बताएं तो आज धर्मशाला का अधिकतम तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी बनी हुई है 49% और हल्की सी धूप आज रहने वाली है। और अगर डिटेल में हम बात करें मौसम की श्रोताओं, तो आपको बता दें कि हर क्षेत्र में मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, यानी कि बारिश होने के बाद जितनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ा सा हमें राहत मिली है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीले तूफानों ने ऊँची चोटियों को बर्फ से भी ढक दिया है। लाहौल स्पीति, रोहतांग और अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली है। साथ ही श्रोताओं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 मई से 25 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। और इस दौरान राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी भी हो सकती है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरने के आसार हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि बारिश और बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में पर्यटक नगरी मनाली में पर्यटन को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो श्रोताओं, ये तो थी मौसम को लेकर जानकारी और इस मौसम को आप इंजॉय कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपने घूमने जाना है तो आप कुल्लू की तरफ, चंबा की तरफ, हिल स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल कर। और कार्यक्रम में अब इस जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और कुछ ही पलों में अब समाचार आने वाले हैं, तो चलेंगे सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 3 चरणों में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के पहले चरण में 26 मई, दूसरे चरण में 28 मई और तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को 24 व 25 मई को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 3 चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुखू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय का देशव्यापी योग 365 अभियान लोगों की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। 13 मार्च से शुरू हुआ ये अभियान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सम्पन्न होगा। ऊना जिला में योग 365 अभियान को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के योग 365 अभियान के अंतर्गत ऊना में जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 मार्च से शुरू 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में गांव स्तर पर सामाजिक संगठनों, नुक्कड़ नाटकों और आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोगों को नियमित योग अभ्यास से सेहतमंद रहने और जीवन शैली से जुड़े रोगों के अलावा गैर संक्रमित रोगों से बचाव बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को आयुष मंत्रालय की अनूठी पहल निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण सत्रों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा हर रोज प्रसारित की जाने वाली लाइव योग कक्षाओं से लोगों को जोड़ने बारे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुमोज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। प्रदेश में मई माह में एलपीजी की डिजिटल बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि फरवरी माह तक ये बुकिंग 85% थी। इसके अलावा डिजिटल बुकिंग करने से फर्जी बुकिंग और डुप्लीकेशन भी कम हुई है। कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियां डिजिटल प्रमाणीकरण कोड को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं और वर्तमान में हिमाचल में इन कंपनियों ने 94% प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिलने से फायदा हुआ है।
3: जयसिंह ठाकुर बेरगांव से, लहसुन पिछले 100 रुपए था, इस बार 145 दिखा।
4: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है बिधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है।
5: हम राकेश कुमार, मैं कुन्हार से आया हूँ और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिला है जिमीदारों को और जिमीदार बहुत खुश है इस बार।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबरों को जगह दी है। अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे 1500, 2215 पद भरेंगे। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, इंस्पेक्टरी राज से मिलेगी मुक्ति। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, टूरिस्ट सीजन में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, 2500 पद भरने की मंजूरी। हिमाचल दस्तक लिखता है, विभिन्न विभागों में 1829 नए पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रेरा की मंजूरियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धारा 118 के उल्लंघन पर घिर रहे अधिकारी। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उबला देश, हिमाचल में राहत की बौछारें, 25 मई तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: 91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद सभी श्रोताओं को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सभी श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके होंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो श्रोताओं चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला एक और प्यारा सा गीत, बाजीगर इस फिल्म का गीत। लीजिए सुनिए विनोद राठौर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और 90s और 80s की बात है ये, जब कोई किसी से प्यार करता था तो ये भी समझ नहीं आता था कि उसे बताएं कैसे या उसे छुपाएं कैसे। लेकिन आजकल ये सब बिल्कुल भी नहीं होता श्रोताओं। आजकल जो भी दिल में होता है वो मुंह पर एकदम से आ ही जाता है। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे आज के दिन के इतिहास पर। श्रोताओं, आज 23 मई का दिन है और आज का दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ, क्या हुआ, वो सब आपके साथ ज़रूर हम साझा करेंगे। श्रोताओं, बात करते हैं 1568 की। आज ही के दिन नीदरलैंड ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। साथ ही आज ही के दिन 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर के सहयोगी हेनरिक हिमलर ने सहयोगी सेनाओं की विरासत में आत्महत्या कर ली थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और हम बात करेंगे 1947 की। आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश

कैबिनेट ने लॉर्ड माउंटबेटन ने के भारत के विभाजन यानी कि भारत और पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 1951 की बात करेंगे, चीन और तिब्बत के बीच 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर आज ही के दिन हुए, जिसके तहत तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। श्रोताओं, आज ही के दिन 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की पांचवी महिला बनी। साथ ही आज ही के दिन 1995 में जावा प्रोग्रामिंग भाषा की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई थी। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि इस दिन को कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कछुआ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और कार्यक्रम में आज हम आपके साथ बात भी करेंगे विश्व कछुआ दिवस पर, तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। और अब अपनी बातों को यहीं पर विराम देकर कार्यक्रम में हम लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए, सुनिए हिना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, इस गीत ने कहीं ना कहीं हमें पुराने समय की ओर धकेल दिया, यानी कि बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो एकदम से तरोताज़ा हो जाती हैं जब हम ऐसे गीत सुनते हैं। ख़ास करके चिट्ठी का नाम जो है वो अब कहीं जाकर सुनने को मिलता है, गीतों में ही ये सिमट कर रह गया है। श्रोताओं, वो भी एक दौर था जब हम लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे, और उस लेटर को लिख के फिर हम उस पर एड्रेस लिखते थे और फिर जाकर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में हम लोग उसे डाल देते थे, और 5 से 7 दिन का समय लगता था वो लेटर वहाँ पहुँचने में, और हमें इंतज़ार होता था उस लेटर के जवाब का। और अगर घर पर पोस्टमैन अंकल आ जाते थे तो बड़ी खुशी होती थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर दौड़ते थे, देखते थे कि किसकी चिट्ठी आई होगी। और ख़ास करके जब हमारे घर के कई सदस्य बाहर कहीं जॉब करते होते थे या पढ़ते थे तो उनका लेटर जो है वो आया करता था। एक ही चिट्ठी को 10-10 बार भी हम पढ़ते थे और एक सदस्य नहीं, हर सदस्य के हाथ में वो चिट्ठी जाया करती थी। और घर में ऐसे बड़े बुज़ुर्ग भी होते थे जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो वो कहते थे कि इस चिट्ठी को पढ़कर हमें सुनाओ, और एक बार नहीं 4 से 5 बार उस चिट्ठी को सुनना उन्हें अच्छा लगता था। श्रोताओं, वो भी एक दौर था जब हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी प्यार एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा था। एक दूसरे का कह सकते हैं संभाल होती थी, सोच होती थी, याद होती थी, और किसी के आने का इंतज़ार होता था, किसी की चिट्ठी के आने का इंतज़ार होता था। वो इंतज़ार अब कहीं खो गया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे हाथ में चिट्ठी की जगह ले ली है फ़ोन ने, व्हाट्सएप ने। बहुत सारे ऐसे चीज़ें बन चुकी हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, एक दूसरे को अपनी बात तो पहुंचा ही सकते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को दूर बैठे हम देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरी भी है, क्योंकि जो प्यार पहले हुआ करता था वो अब बहुत कम रह गया है। खैर, अपनी अपनी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गीत ने हमें पुराने वक्त की ओर मोड़ दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया। वो पुराने दिन जिन्होंने देखे हैं उन्हें ज़रूर याद आ गए होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और अब हम बात करेंगे आज के दिन की खास। लेकिन फिर से हमें अपनी बातों को यहीं पर विराम देना पड़ेगा क्योंकि बातें लंबी हो गई हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत के बाद हम फिर से चलेंगे अपनी बात की ओर। मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत, श्रोताओं लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम में हमने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपसे बात की थी कि आज हम बात करेंगे विश्व कछुआ दिवस की, तो श्रोताओं, हर साल 23 मई को यानी कि आज के दिन विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को कछुओं के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूक करना होता है। श्रोताओं, कछुए धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक माने जाते हैं। ये समुंदर, नदियों और जंगलों के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण कछुओं की कई प्रजातियां खतरे में हैं। तो श्रोताओं, अक्सर लोग प्लास्टिक और कूड़ा पानी में फेंक देते हैं, जिससे समुद्री जीवों को बहुत नुकसान होता है। कई बार कछुए प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे कि उन्हें खतरा बन जाता है और उनके लिए वो जानलेवा भी बन जाता है। तो श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, नदियों और समुद्रों में कचरा ना फैलाएं और वन्य जीवों की रक्षा करें। छोटे छोटे प्रयास ही प्रकृति को सुरक्षित बना सकते हैं। तो श्रोताओं, हम अपने घर का कूड़ा कचरा कई बार प्लास्टिक के लिफाफे में या कुछ भी है, हम नदी नालों में फेंक देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया, अपना घर, अपना प्रदेश साफ़ सुथरा कर लिया। लेकिन जहाँ हम धरती पर रहने वाले जीव हैं, वैसे ही पानी में रहने वाले भी बहुत सारे जीव हैं। जो पानी में रहते हैं उनका घर ही वो है, लेकिन ये जो कूड़ा कचरा है ये उनके लिए खतरा बनता जाता है। तो इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सभी को जीने का हक है, सभी की ज़िंदगी साफ सुथरी और अच्छी बीते, इसके लिए हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बातों को फिर से हम देंगे विराम और चलेंगे, आपको सुनवाएंगे किस्मत फिल्म का प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

श्रोताओं, 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम में और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अंतराल के बाद। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में हम लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, मनोरंजन भी करवाते हैं आपका प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और साथ ही आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ। तो चलते हैं, लेते हैं कुछ एक जानकारियाँ। श्रोताओं, धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित कार्यक्रम की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जन को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति जन समर्थन तैयार करना है। श्रोताओं, कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। इनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से शामिल रहेंगे। दोनों ही युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार और उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ये थी जानकारी श्रोताओं, जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे और सुनवाएंगे आपको, और हम भी सुनेंगे आपके साथ ये प्यारा सा गीत बागी फिल्म से। और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। एक बार फिर से आपको बता दें, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां और साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हम रुख करेंगे जानकारियों की ओर। सहायक आयुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया है श्रोताओं कि भारतीय सेना द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 25 मई को सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक फायरिंग की जाएगी। उन्होंने कोहाला, कछियारी, खोली तथा घुरकड़ी के लोगों से आग्रह किया है कि 25 मई को फायरिंग रेंज के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। तो श्रोताओं, ये थी ज़रूरी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत गोलमाल 3 फिल्म से। गीत को आवाज़ से सजाया है शान ने, अनुष्का मनचंदा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं आप सभी के साथ। श्रोताओं, गर्मी का ये समय है और गर्मियों में आजकल हमारे पास बहुत सारे फल फ्रूट जो मार्केट में हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और हमें आजकल गर्मियों में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इन सब का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आज बाज़ार में खीरा भी आपको मिलेगा, खरबूजा भी मिलेगा, तरबूज भी मिलेगा और हर तरह के फल आपको मिलेंगे। साथ ही नींबू तो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, और आजकल के समय में हम यही कहेंगे कि कहीं से बाहर से अगर आप आते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिज खोल कर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकाल कर पी लेते हैं। उससे बेस्ट है कि हम नींबू का शरबत बनाएं, नींबू पानी बनाएं और उसका सेवन करें और गर्मियों से बचें, क्योंकि गर्मियों में हम बड़े हों चाहे बच्चे हों बुज़ुर्ग हों तो सभी को पानी की कमी हो जाती है, ख़ास करके उन लोगों को जो पानी का सेवन बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में हमें पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अगर हमें प्यास नहीं भी लगती है तो भी थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके पानी ज़रूर पीना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में बात करना तो बनता ही है। तो श्रोताओं, आज हम बात थोड़ा सा करेंगे अपने युवा से। युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं, उनके सपने, उनकी ऊर्जा और उनकी सोच ही देश का भविष्य तय करती है। लेकिन आज के समय में एक चिंता का विषय तेज़ी से सामने आ रहा है, युवाओं में बढ़ता आक्रोश और रैगिंग जैसी गलत प्रवृत्तियाँ। तो श्रोताओं, सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, कहीं भी आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी खबरें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं जिन पर हमें सोच विचार करना पड़ता है या करना चाहिए। तो इसी बात को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में रुकते हैं और लेते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत। लीजिए, कार्यक्रम में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे हमने लिया है आप तो ऐसे ना थे फिल्म से, और गीत को आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत। इस गीत से पहले श्रोताओं हम बात कर रहे थे युवाओं की, युवाओं में बढ़ता आक्रोश और रैगिंग जैसी गलत प्रवृत्तियों के बारे में। श्रोताओं, कॉलेज और स्कूल जीवन सीखने, दोस्ती और अच्छे भविष्य की तैयारी का समय होता है, लेकिन कई जगह पर रैगिंग मजाक की सीमा पार कर मानसिक तनाव, डर और अपमान का कारण बन जाती है। कई छात्र इस वजह से अकेलापन महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। श्रोताओं, किसी का मजाक उड़ाना, डराना या नीचा दिखाना बहादुरी बिल्कुल भी नहीं होती। असली ताकत तो दूसरों को सम्मान करने और उन्हें आगे बढ़ाने में होती है। आज युवाओं में बढ़ते गुस्से का एक कारण तनाव, प्रतिस्पर्धा और सही मार्गदर्शन की कमी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे समय में परिवार, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे युवाओं को सही दिशा दें, उनकी बातें सुने और उन्हें सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करें। युवाओं को भी चाहिए कि वे अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं। खेल, संगीत, पढ़ाई, नई तकनीक, समाज सेवा और अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। तो श्रोताओं, अपनी बातों को यहीं पर फिर से हम देंगे विराम और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, जिसे हमने लिया है कृष्णा फिल्म से, और गीत को आवाज़ों से सजाया है कुमार शानू और साधना सरगम ने।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे कार्यक्रम में, आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम बात जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाएंगे। आज का समय पहले से काफ़ी बदल चुका है। पढ़ाई, नौकरी और बेहतर भविष्य के लिए कई बच्चे अपने घर और गाँव से दूर दूसरे शहरों में जाते हैं। ऐसे में माता पिता की चिंता भी बढ़ जाती है। बच्चों को बाहर भेजने से पहले केवल अच्छे कॉलेज या नौकरी की जानकारी ही काफ़ी नहीं होती श्रोताओं, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी कई ज़रूरी बातें समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले बच्चों को सही और गलत की पहचान ज़रूर समझाएं। उन्हें बताइए कि हर चमकती चीज़ अच्छी नहीं होती। गलत संगत, नशे की आदत और गलत रास्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आज के युवाओं पर सोशल मीडिया का भी काफ़ी प्रभाव है, इसलिए बच्चों को समझाइए कि ऑनलाइन दुनिया में भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं, जो हम अपने बच्चों को कहीं भी बाहर भेजने से पहले समझा सकते हैं और उन्हें सतर्क कर सकते हैं। अब इन बातों को यहीं पे रोकते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में। सुनते हैं इम्तिहान फिल्म का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं बहुत प्यारा ये गीत अभी हमने सुना। जैसे कि हम युवाओं के बारे में बात कर रहे थे कि आज का युवा अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए घर देश प्रदेश से दूर भी चला जाता है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात वहाँ पर भी आ जाती हैं। तो ऐसे में ये गीत बहुत ही अच्छा है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बिल्कुल परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जाना है। साथ ही श्रोताओं इसके साथ ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है। उन्हें पैसों की सही समझ, समय की कीमत और जिम्मेदारी निभाने की आदत भी हमें सिखानी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों पर केवल दबाव न डालें बल्कि उनके दोस्त बने, बच्चों की बात सुने, उनकी परेशानियों को समझें और उन्हें भरोसा दें कि परिवार हमेशा उनके साथ है। और साथ ही हम युवाओं से भी ये कहना चाहेंगे कि युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि बाहर की दुनिया अवसरों से भरी है लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। अच्छी सीख और सही संस्कार बनाते हैं बच्चों का भविष्य शानदार। तो श्रोताओं बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने की समझ देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सही मार्गदर्शन ही उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। और अब इन बातों को यहीं पर रोक कर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे यस बोस फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, अब हम अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ी सी बात करेंगे आजकल के मौसम को लेकर, यानी कि आजकल गर्मियां हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पानी का सेवन ज़्यादा करें, और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ पानी की बॉटल लेकर जाएं और छाता लेकर चलें अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं तो। साथ ही श्रोताओं, गर्मियों में हमें अपने साथ साथ अपने जो पशु पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हो सके तो अपने छत पर ज़रूर किसी बर्तन में पानी और दाना रखिए, क्योंकि ये जो उड़ने वाले पक्षी हैं ये भी कहीं ना कहीं हम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि नदी नाले आजकल सूख जाते हैं। तो श्रोताओं, साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर आप लोगों ने फल फूल वाले पौधे लगाए हैं तो उन्हें भी समय समय पर पानी ज़रूर दें। तो आजकल की गर्मी के समय में जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए उनका ख्याल रखते हुए हम कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत कर्ज फिल्म से। आवाज़ें हैं कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा कर रही हैं कि अपनी बातों को यहीं देना होगा विराम। तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, ये तेरा घर ये मेरा घर फिल्म से, और आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। तो जाने से पहले हम यही कहेंगे कि आज हमने आपके साथ बात की वर्ल्ड टर्टल डे पर, तो प्रकृति को बचाएं, जीवों से प्यार बढ़ाएं, कछुओं की रक्षा कर धरती को सुंदर बनाएं। तो आइए श्रोताओं, विश्व कछुआ दिवस पर हम सब मिलकर प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा का संकल्प लें। इसी प्यारे से संदेश के साथ दीजिए अपनी रेडियो दो सुषमा को आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 超开呢
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो अब यूं तो सड़क खाली लग रही है पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे
2: हेलो
0: हे तुम खबर है
2: जैसे चौकन्ना रहिए
0: याद रखना यहां हर पल चौकन्ना है रहना ये सड़क है भैया संभल के चलना
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया पर गलत होता देखना भी अपराध है ये समझ किसी को आता कहाँ है कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है
5: मामा नो शेयरिंग
4: कोई स्पेशल हाँ हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए
5: कौन था
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है
5: और आप मांग गए जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा
4: स्मार्ट गर्ल
5: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें
4: याद है ना नो शेयरिंग
5: मामा
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ
7: सुनो एक बात बताओ शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो जिंदगी तो शादी के बाद होती है बीवी के साथ रोटियां बनवाओ खाना बनवाओ

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चौसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबाए
1: चौसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मांग गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है फिर से कार्यक्रम का एक और एपिसोड लेकर। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मैम आपका इस एक और प्यारी सी जानकारी के साथ और प्यारी सी बातचीत के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका।
0: जी तो मैम कैसे हैं आप? बहुत समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है।
1: जी हम अच्छे हैं।
0: जी और लाइफ में किस तरह से, कहते हैं ना, जब मुझे लगता है आप घूमने गए थे कहीं या फिर काम में बिजी थे, किस कुछ ऐसा चल रहा था?
1: काम में बिजी थे।
0: जी तो काम में हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं ना।
1: जी
0: अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका?
1: हमारा तो अच्छा ही रहता है।
0: मतलब डिफरेंट लोगों के साथ, मतलब डिफरेंट आपको स्ट्रगल करना पड़ता है या किस तरह से?
1: कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है। और क्योंकि इट्स लाइक जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम क्लाइंट की नहीं होती, वो प्रॉब्लम आपकी भी बन जाती है।
0: जी बिल्कुल। अब दोस्त हमारे ये सोच रहे होंगे कि केस की बात क्यों की जा रही है। तो दोस्त आप सभी को बता दें, आप सभी जानते हैं मैम मनोवैज्ञानिक हैं और ये काउंसलिंग सेशंस जो हैं लेते हैं बच्चों के, बड़ों के, सभी की, जो भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, समझ नहीं पाते कि आखिर क्या किया जाए, इस मोड़ पे हम पहुंच जाते हैं। और मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आप डिफरेंट लोगों के साथ डील करते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आज की हमारी ये बातचीत उसी से संबंधित होने वाली है। तो इसलिए ये छोटा सा हिंट था हमारे दोस्तों के लिए। खैर इस पे हम जरूर आएंगे, पर मुझे लगता है कि शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ हो जानी चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी तो आइए दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिंदगी में लोग बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, लाइफ को फेस करने का तरीका अलग होता है, नजरिया अलग होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं और आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास बातचीत इससे जुड़ी रहने वाली है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: तो दोस्तों, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो आइए आज के इस कार्यक्रम को और भी खास बनाते हैं, अपनी बातचीत को और भी खास बनाते हैं, क्योंकि जानकारियां हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो मैम, मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यवहार हमें फेस करने पड़ते हैं, हर किसी की सोच हमारे जैसे नहीं हो सकती, नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता है। तो क्यों ना आज अपने दोस्तों के साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की जाए।
1: हाँ बिल्कुल रुचिका, हमें लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जिस व्यक्ति को ये है उसे खुद इंसाइट नहीं होती कि मेरे साथ कोई दिक्कत भी है या मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता भी है, जिसके कारण से वो इंसान तो जीवन को खुशी से जीता रहता है, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो सफर करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जितना लोगों को जानकारी होगी इस चीज के बारे में, लोग अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कई बार बहुत बहुत गहरा प्रभाव छोड़ के जाता है।
0: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य हमारा एक छोटी सी छोटी बात को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट कर जाता है ना कि हम उतना सोच भी नहीं पाते। तो मैम ने बात की कि अक्सर जब हम अपने बारे में सोच नहीं पाते, और असल में हम देखते हैं मैम कि औरों के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है, और खुद की बात करें तो हमें चीजों का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, असल में इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे पहचान सकते हैं।
1: देखिए, पहली चीज तो डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर, उसमें तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं। पहला कि कोई भी थॉट, इमोशन, बिहेवियर है या एटीट्यूड है, वो हमारे जिसकी हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओवर थिंकिंग है तो उसकी एक पर्टिकुलर ही थॉट बार बार आ रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, इंटेंसिटी या तो बहुत ज्यादा है या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और ड्यूरेशन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है या उतनी है नहीं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को डिसऑर्डर करार करने के लिए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि ये ऐसी परेशानी है जो उसमें स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण से आपकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। याद रखे कि और है एंड नहीं, यानी कि तीनों में से अगर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चिंता की बात है, यानी कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचे और अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करें। अब आते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर। तो पहले समझते हैं रुचिका कि पर्सनैलिटी ओवरऑल होती क्या है।
0: बिल्कुल,
1: डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम बाद में आते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, पर्सनैलिटी जो एक टर्म है, इसका मतलब होता है मास्क, जो पर्सोना से निकला है। तो पर्सोना जो कि एक मास्क है, ये मास्क किसके लिए है? अपने आसपास के लोगों के लिए। जब हम कमरे में अकेले होते

0: आएगा। तो जब लोगों को अवेयरनेस होती है तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे तब भी थोड़ा काम कर सकते होते हैं। लेकिन तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो है जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं पाते, जहां पर वो बदलना चाहते नहीं, जहां उन्हें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता
1: जरूरत है। बिल्कुल।
0: देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में बदलाव तब लाना चाहेगा जब उसे खुद उस चीज से दिक्कत हो रही होगी। दैट्स द थिंग कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन इंडिविजुअल्स को होता है, उन इंडिविजुअल्स को खुद की पर्सनैलिटी से कोई तकलीफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिप्रेशन है तो हमारी जो थॉट्स हैं उससे हमें तकलीफ होगी, हमें दिक्कत होगी। अगर हमें एंजाइटी है तो हमें उस जो एक मेंटल स्टेट है हमें उससे दिक्कत होगी। हेंस आई वुड ट्राई कि हम अपने आप में कुछ बदलाव लाएं और हम इस सफरिंग से बाहर
1: निकल सके।
0: बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ ये भाव ही नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक चीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ही है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तक सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं, चेंज पॉसिबल नहीं है, उनमें इंसाइट नहीं है। वो एक ही प्रकार के थॉट, इमोशन या बिहेवियर के पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं बार बार, सालों साल तक। ऐसा मत सोचिएगा कि जब जब लेट्स से जब जब एग्जाम आता है तब तब बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है तो ये उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हिस्सा है। नहीं, ये आम बात है, ये अलग बात है। यहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जाम के होने की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए उसको बुखार होता है या इसलिए उसको लूज मोशन हो रहे हैं। परंतु पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करी जा रही है तो ये बहुत ही आम जीवन में जिस प्रकार के लोगों के व्यवहार होते हैं उनमें देखे जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, वो आए और वो बोले कि अरे आप ये पर्टिकुलर काम जो है अपनी बेटी से करा लीजिए, और वो उस बात पर उखड़ जाए जहाँ कि उस बात पर उखड़ने की आवश्यकता थी नहीं। ऐसा व्यवहार उनका पहले था, आज है और हमेशा
1: रहेगा।
0: सिर्फ उखड़ना ही काफी नहीं है, ये हम अगेन सबको बता दें, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर होता है उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसके मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके प्रति एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर साइन देखकर आप ये अज्यूम ना कर लें कि उनको डिसऑर्डर है। किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है ये जागरूकता और ये अवेयरनेस और एक प्रकार की जिम्मेदारी होना सभी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको समझें, लेकिन आप लोगों को जज ना करें, आप लोगों को समझने का प्रयास करें। उल्टा
1: बिल्कुल सही कहा है, इस बात को भी मैं भी ये कहना चाहूँ, क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं, करते हैं असल में जिंदगी में, हम दूसरों को जज करना पहले शुरू कर देते। कोई अगर बड़ी हिम्मत जुटा के अगर कोई काम करना भी चाह रहा है तो फिर उसकी हिम्मत वहीं ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उसे पहले ही डर हो जाता है कि लोग मुझे जज करेंगे, तो वो कोई भी काम शायद अच्छे से कर भी नहीं पाते और वो अपने बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं कि मैं कुछ भी करूं जज तो लोगों ने मुझे करना ही है। तो लोगों को समझना और सबसे बड़ी बात की सुनना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर चाहे अपने मन की बात हो, उसे भी तो सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपने मन की बातों को मन में आ तो जाते हैं लेकिन फिर वही डर कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इसको जुबान पर लेकर भी आ गया, जैसे अगर मान लो कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है, कोई मतलब कि जागरूकता की बात ही चल रही है, कोई स्कूल में कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हमें वहां भी वो एक तरह से जजमेंट वाली चीज जो है सताती है कि अगर मैं इस तरह से सबके सामने स्टेज पे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम है या जैसे भी है, तो वो अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये डांस कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़कर डांस कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़कर इस, मतलब होता है ना, अपनी अपने नजरिए से अपने अपने तरीके से लोगों की जो परसेप्शन होती है एक तरह से वो बनती जाती है, और कहीं ना कहीं उसी तरह से फिर हम लोग अपने आप को दबा देते हैं, अपने आप को शायद आगे नहीं बढ़ा पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है अपने मन को समझना, क्योंकि मन चंचल होता है, मन बहकता भी है, मन हमें बहुत सारी, क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसी चीजें होती है, सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन हम खुद को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। खैर, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, और हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, मैम की अलग है, मेरी अलग है, आप लोगों की अलग है, तो और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो ये प्रयास ही है जो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रयास करने से ही तो जिंदगी सफल होती है, आसान होती है। तो यही प्रयास हम भी कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को हर दिन जागरूक कर सके, अवेयर कर सके और सतर्क कर सके। आजकल बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी न्यूज हमारे सामने आ रही है ना कि एक तरह से शॉक लग रहा है, सुनने में भी डर लग रहा है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है जिनपे हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, वही हमें धोखा दे जाते हैं, है ना। जिंदगी से एक तरह से हमें दूर करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। तो किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने मन पे विश्वास कीजिए। फिलहाल आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये बातें तो आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को सतर्क नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुक पाएंगे। तो अपने साथ साथ अपने सामने जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम दूसरों के साथ गलत होता हुआ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि ये हमारे घर की बात नहीं है और अगर हम इस चक्कर में पड़ गए तो बात बहुत खिंच जाएगी।
1: अरे अपने घर की बात, अपने घर की बात के लिए भी लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आजकल ऐसा समय भी आ गया है। खैर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं मैम, तो क्यों ना अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम एक ही वे में लेते हैं या इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये किस तरह से जो है काम करता है।
1: देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स टोटल 10 होते हैं और हर एक डिसऑर्डर का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है, अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो 10 डिसऑर्डर्स हैं इनको प्रोफेशनल्स ने 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में बांटा हुआ है। क्लस्टर ए जिसमें 3 डिसऑर्डर्स हैं, क्लस्टर बी जिसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं एंड क्लस्टर सी जिसमें अगेन 3 डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार से हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को समझते हैं।
0: मैम तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको क्लस्टर्स में डिवाइड क्यों किया गया है और जो आपने 3 क्लस्टर्स बताए तो इनमें एक एक करके बताइए कि एक एक में क्या क्या किस तरह से ये काम करता है।
1: बिल्कुल, देखिए जब इनको समझा गया और इनको एक डिसऑर्डर का नाम दिया गया तब ये देखा गया कि एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स ओवरलैप हो जाते हैं इन एन इंडिविजुअल। ये इस प्रकार से है जैसे सर्दी हुई तो साथ में बुखार भी आ गया।
0: बिल्कुल,
1: तो यानी कि अगर एक डिजीज है तो उसके साथ दूसरी डिजीज के सिम्टम्स थोड़े आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं या 2 डिसऑर्डर्स एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसा अधिकांश समय पर देखा गया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ तो ऐसा डेफिनेटली होता है। क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए उसने किस प्रकार का पर्सनैलिटी को कैप्चर कर रखा है, कैसे वो इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए, इस जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने के लिए उसने कैसा पर्सोना क्रिएट कर लिया है। अब उस सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए हो सकता है कि एक से काम ना चले, उसको दूसरे का भी सहारा लेना पड़े। तो ठीक इसी प्रकार से 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई। क्लस्टर ए की बात करें तो क्लस्टर ए में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी ऑफ रहती है, एज इन वो नॉर्मल लोगों से काफी अलग होते हैं, वो नॉर्मल लोगों के साथ उठना बैठना इतना कर नहीं पाते, उन्हें उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, लाइक ऐसे इंडिविजुअल्स को देखकर सामने बैठा इंसान खुद सोच सकता है या समझ सकता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है शायद ये नहीं पता पर कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ। इसमें क्लस्टर ए में हमारे 3 बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो है हमारा पहला पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पैरानोया स्किजोफ्रेनिया एक अनदर डिसऑर्डर है, तो स्किजोफ्रेनिया में जब पैरानोया होता है वो अलग है, पर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी में उसको शक रहेगा ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं है कि वो शक कभी हमेशा के लिए चला जाएगा, नहीं, वो शक परसिस्ट करता रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी किसी व्यक्ति के ऊपर शक जाएगा, कभी किसी व्यक्ति पे शक जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि कोई मुझे मारना चाह रहा है या कोई मेरे बारे में खराब बातें सोच रहा है, कोई मेरे बारे में खराब बातें कह रहा है, वो मेरी कहते ना मेरी चुगली करता होगा या वो लोग मुझ पर हंसते होंगे, उन्हें इस प्रकार के थॉट्स सताते रहते हैं और वो इसी प्रकार के बिलीफ के साथ जीते, तो इसलिए उनके साथ वो उनके लिए दोस्ती करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आता है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोनों में ही ऐसे देखा जाता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर एक व्यक्ति को बहुत स्पेस चाहिए होता है, जैसे स्किज़ोइड है उनको बहुत स्पेस चाहिए होता है, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद। अगर गलती से ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो कभी भी अपने वाइफ के साथ या अगर गर्ल को है तो हस्बैंड के साथ वो अपना रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाते, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। उनके पार्टनर हजारों कोशिशें करते रह जाएंगे टू डेवलप अ गुड रिलेशन बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसऑर्डर है ना, तो उनको नहीं लगेगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि बस मैं नहीं चाहता एंड दैट इज इनफ। उनके पास रीजंस नहीं होंगे, उनके पास बताने के लिए एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, उनके पास वो सोशल जो एक डेवलपमेंट होता है रिलेशन में वो नहीं होगा, उनके दोस्त भी नहीं होंगे, उनको लगेगा कि मैं लोगों से अलग हूँ। और एक है स्किज़ोटिपल जिसमें लगेगा कि ये दुनिया ही अजीब है, ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है, उनको लगेगा मैं यहाँ फिट नहीं होता, वो भी अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीन डिसऑर्डर्स हैं इन तीनों में कॉमन क्या देखा जा रहा है कि ये ऐसा जो व्यक्ति होगा उनको सोशल रिलेशंस डेवलप करने में चैलेंजेस आएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इनकी थोड़ी अपनी दुनिया होती है,
0: अपने में रहना पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अब आगे हम लोग बढ़े उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ले रुचिका
0: जी। बिल्कुल मैम, कहते हैं ना कि बातों के साथ साथ थोड़ा सा, और बातें बहुत गंभीर चल रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं तो दोस्तों गंभीर तो होंगी ही, और अक्सर हम खुद में रहना पसंद करते भी हैं, आप ये सभी जानते हैं। थोड़ा सा और जानकर देखिए कि सच में आपके साथ भी ऐसा होता है, रिलेशंस डेवलप करने में मुश्किलें आती हैं या नहीं आती, ये जो बातें हमने की कहीं आपके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा, ये डिसऑर्डर कहीं आपको खुद में देखने को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो जब हमें जानकारी मिलती है उस चीज से जुड़ी तो हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं।
1: इसमें बस हम एक बात ऐड करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे कुछ चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनको या ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं तो वो जो है उनके लिए रिलेशंस बिल्ड करना उस दौरान डिफिकल्ट हो जाता है, या अगर कोई ब्रेकअप फेज से गुजर रहा है या अगर देयर फ्रेंड्स हैव घोस्टेड देम और तब उन्हें डिफिकल्टी हो रही है। इन सिचुएशंस में आपको ये डिसऑर्डर नहीं होगा तो अपने ऊपर लोड भी नहीं लेना है। ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत एक्सट्रीम लाइक एक्सट्रीम एग्जांपल्स के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कमरे से बाहर आना पसंद ही नहीं करता है, जो हफ्ते दो हफ्ते में शायद एक बार बाहर आता हो। और जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हैं कहीं से कनेक्ट कर पा रहे तो जरूरी नहीं कि यही वाला डिसऑर्डर हो। तो अगेन आप बस इतना समझिए, अगर ये कोई भी साइन या सिम्टम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करिए, कंसल्ट करिए, क्योंकि सही डायग्नोसिस तो वही देंगे। अपने ऊपर किसी भी तरह के टर्म को लेबलाइज नहीं करना है, ये समझना है कि हम अवेयरनेस के साथ
0: आगे बढ़ेंगे,
1: सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे।
0: मैम के कहने का मतलब एक ही है कि खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है। जिस चीज के लिए जो जो हमारे लिए सुविधाएं हैं उनके पास जाइए और उस सुविधा का लाभ उठाइए, तो ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है क्लियर हो सके, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले तो वो भी हमारे लिए परेशानी बन जाती है। खैर, तो इस परेशानी को दूर करते हैं, यानी कि इस गंभीर बात से थोड़ा सा आपको मनोरंजन की ओर लेकर चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये एक खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में और बहुत ही खास जानकारी के साथ। तो आइए, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पर्सनालिटी तो हर किसी ने सुना है, हर कोई अपनी पर्सनालिटी को हाई लेवल पे रखना चाहता है, दिखावे के चलते ही सही, लेकिन कौन चाहता है कि हम किसी से कम दिखें? तो जरूर दिखिए, लेकिन साथ ही डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो मैम, हम बात कर रहे थे, मैम ने अभी बात की कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में जो है उसे डिवाइड किया गया है। तो क्लस्टर ए की हमने बात की, जिसमें कि शक की ज्यादा हमारे में गुंजाइश रहती है, या फिर हमें खुद के साथ ज्यादा रहने की आदत होती है, एक कमरे में बंद रहने की आदत होती है। तो क्लस्टर बी की ओर बढ़ते हैं आगे और उसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्लस्टर बी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को किस तरह से लिया गया है, किस तरह से उसे हमारे लिए पहचान बनाई गई है। तो मैम, जरूर हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, क्लस्टर बी जो है डिसऑर्डर, वो बेसिकली कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को सोसाइटी में ढलने में, घुलने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, यानी कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस हमेशा खराब रहेंगे। वो रिलेशंस बनाना तो चाहेंगे, लेकिन एक प्रकार की स्टेबिलिटी उनमें नहीं आ पाएगी। अब क्लस्टर बी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं चार। पहला है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, और डायग्नोसिस के समय पे ऐसा लगता है कि इनको तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन तब भी कोई फुल वो तो ना कम्प्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का वो कम्प्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, तब उन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। इनकी जो पर्सनैलिटी, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे
0: जी।
1: ये ऐसे लोग हैं जिन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। इनको लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, इसका बहुत डर रहता है। इनके अंदर सेल्फ डाउट रहता है। इनके अंदर ये मल्टीपल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर ऐसा भी होता है कि लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम बहुत रहेगी। इनको ये रहेगा कि कोई शायद हमें पसंद नहीं करता है। इन ये चाहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो ड्यूअलिटी रहेगी। और सुसाइडल थॉट्स या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर, ये चीजें भी देखी जाती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको अटेंशन को ग्रैप करने के लिए वो कुछ अटपटी चीजें करते रहेंगे, जैसे कि अटपटे शब्दों का प्रयोग करना, अपने इमोशंस या भावनाओं को प्रकट करने के लिए वो कुछ एक्सट्रीम टाइप के वर्ड्स का यूज करेंगे। वो एक्सट्रीम टाइप से अपने आप को कैरी करेंगे। उनका जो पहनावा होगा, जो मेकअप होगा, वो बहुत लाउड होगा। यहाँ तक कि इनके भी मल्टीपल रिलेशंस होंगे, इनको भी प्यार की कमी रहेगी, इनको लगेगा हमें बस प्यार चाहिए, और उस प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, पर वही बात है कि इनका रिलेशंस अच्छे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे बोलते हैं इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, सुपीरियोरिटी की, मतलब मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। इनको ये ख्याल रहता है कि मैं जो हूँ मैं सब कुछ हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं या तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, या मेरे इशारों पर दुनिया चलनी चाहिए। अगर आप इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे तो इनको इंसल्ट फील हो जाता है। इनको इनके अंदर एट द कोर तो एक्चुअल में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत इनसिक्योर होते हैं ये, पर क्योंकि पर्सनैलिटी है जो मास्क है वो कैसा है, वो रहेगा
0: हाई लेवल का,
1: हाईली कॉन्फिडेंट शो करेंगे वो। इनके अंदर ऐसा अलग सा करिश्मा रहेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। पर यही लोग जो अपने पर्सनल रिलेशंस के साथ होंगे, वाइफ हस्बैंड के साथ या फिर बच्चों के सामने, तो वो बहुत ही अलग तरह की पर्सनैलिटी होंगे। तो सोशल लेवल पर तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि इनसे अच्छा व्यक्ति तो कोई नहीं है, ये तो बड़े विनम्र हैं, सॉफ्ट हैं, रेस्पेक्टफुल हैं, पर असली सच्चाई सिर्फ उनके घर वालों को पता होगी, क्योंकि वो वहां पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों को पावर चाहिए होती है। ऐसे लोग जो हाई स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स या पीपल होते हैं उनके साथ कनेक्शंस बिल्डअप करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं, झूठ बोलते हैं और गैस लाइट करते हैं, यानी अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे और आपको बोलेंगे कि आपने ही गलत किया है, और आप में ऐसा डाउट क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा हो सकता है मैंने ही गलत किया हो। तो ऐसा होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। चौथा डिसऑर्डर जो है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पहले साइकोपैथ बोला जाता था, जिन्हें जिन इंडिविजुअल्स को ये होता था उनको साइकोपैथ या सोशियोपैथ बोला जाता था। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को जिनको लॉ ब्रेक करने में बहुत मजा आता है, उनके लिए रूल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है और ऐसा आप उनके अंदर बचपन से ही देखना शुरू कर देंगे। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा में इस प्रकार के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसके लिए अलग प्रकार का डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर बोला जाता है, कि जहाँ पर बच्चा बड़ों की बात नहीं सुनता टू एन एक्सटेंट कि वो बड़ों को हार्म कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, वो आपको गालियां भी दे रहा है और वो रूल्स भी ब्रेक कर रहा है, वो बेसिकली आपके हाथ के एकदम बाहर जा चुका है, जहाँ पर अब आपको पता ही इसने तो क्राइम वाली हरकतें करनी शुरू कर दी है। यानी अगर बच्चे के लेवल पर कंडक्ट डिसऑर्डर का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, तब बड़े होकर उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेफिनेटली डेवलप होना है, जो कि सोसाइटी के लिए भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब आप देखेंगे जुवेनाइल केसेस में जितने भी बच्चे होते हैं वो अधिकांश लोग कंडक्ट डिसऑर्डर के शिकार है, और जो क्राइम करके बैठे हुए हैं लोग एडल्ट्स, उनको अधिकांश लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो जो सीरियल किलर्स भी निकल रहे हैं वो कौन है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। अब ये सिर्फ वो ही नहीं होते जो क्राइम ही कर रहे हैं, ये अदरवाइज भी लोग होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का कंजम्पशन करना। ड्रग्स का कंजम्पशन करना पता है सबको कि ये इलीगल है,
0: बिल्कुल
1: इलीगल एक्टिविटी है। प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होना पता है कि ये इलीगल है, बट येट दे विल बी इन्वॉल्व्ड। और अगर आप इन्हें बताने का प्रयास करेंगे तो वो आप बोलेंगे चुप बैठो, वो नहीं सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एक आजादी महसूस होती है, वो अपनी अपनी चलाएंगे। और ऐसे लोगों में एक सेंस ऑफ डोमिनेंस भी होगा, इनको फियर नहीं होगा, इन्हें लॉ का कोई फियर नहीं होता। तो बेसिकली ये जो क्लस्टर बी वाले हैं, आई थिंक कुछ चीजों को छोड़कर बाकी अगर देखा जाए तो सभी में एक प्रकार का, या तो इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन तो इनको मिल ही रहा है कहीं ना कहीं लेवल से, जो व्यक्ति क्राइम ब्रेक कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, या जो व्यक्ति लाउड कपड़े पहन रहा है, एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में, लाइक लाउड वे में अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करके एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर एक व्यक्ति अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, हर वे में कहीं ना कहीं से उनको अटेंशन तो कहीं ना कहीं मिल रही है। तो यानी कि देर इज समथिंग जो इनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा जहां पे इन्हें अटेंशन नहीं मिली होगी, एंड अटेंशन पाने के लिए, और अटेंशन यहाँ पे बुरी चीज नहीं होती है क्योंकि अटेंशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लव एंड केयर। तो अगर एक बच्चे को प्यार और केयर मिली ही ना हो तो ऐसे में बच्चा और क्या कर सकता है? तो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उनका माइंड ऐसा पर्सनैलिटी मेकअप कर देता है। पर अगेन, इन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये दोनों डिसऑर्डर्स सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब ये जो बातें सुनी है ना, दोस्तों ने भी सुनी और मैंने भी सुनी, तो दोस्तों आपको भी यही लग रहा हो कि हमारे आसपास तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम उन्हें भी इस डिसऑर्डर से, मतलब कि गुजरता हुआ बोल सकते हैं या फिर क्या?
1: देखिए, कुछ ना कुछ साइंस तो होंगे ही। बेसिकली उन सबको जरूरत है कि वो अपने ऊपर काम करें। डिसऑर्डर है या नहीं वो एक अलग बात है, वो तो प्रोफेशनल्स के लिए है ना। आप उन्हें डिसऑर्डर के एस्पेक्ट से ना देखें, आप ये देखें कि उनमें ऐसा कुछ ना कुछ घटित हुआ है उनके जीवन में जिसकी वजह से आज वो इस परिस्थिति में है। यानी कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, यानी कि उन्हें मदद चाहिए। उनके ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, थॉट्स पैटर्न या इमोशनल पैटर्न्स हैं, ये एक प्रकार का उनका माइंड का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो चीख चीख के बोल रहा होता है कि सेव मी, सेव द इनर चाइल्ड। तो अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं, सो आई रिकमेंड दैट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, लाइफ कैन बी बेटर, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और आप जब ये काम करेंगे तब आपको अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं। तो अपने आप को ओपन करें टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ, टुवर्ड्स अ बेटर यू।
0: बिल्कुल सही कहा है मैम ने दोस्तों, क्योंकि बात घूम फिर के एक ही आ रही है कि अपने आप पे काम करना कितना जरूरी है। तो ये तो आप सभी समझ चुके हैं कि अक्सर हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या तो जैसे मैम ने बात की अटेंशन और लव केयर जो है हमें चाहिए होती है, खास करके बच्चों की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी इनसिक्योर फील करते हैं तो वो फिर उस अटेंशन को पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, वो फिर तभी तो क्राइम का रूप ले लेते हैं और गलत गलत रास्तों की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें एक तरह से डर किसी भी चीज का रहता ही नहीं, जब वो इन चीजों से गुजरते हैं ना तो उन्हें वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें आदत बन चुकी होती है एक तरह से। उन्हें पता है कि कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद फिर हो जाएंगी चीजें, या तो उन्हें पता है कि हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पीछे खड़े हैं सभी, वो कुछ होने ही नहीं देंगे। तो वो निडर, फिर वो जो मैम ने पहले कहा था कि लॉज को ब्रेक करना, मानना ही नहीं कि कोई लॉज भी है हमारे लिए,
1: फाइट्स पिक करना,
0: बिल्कुल जी,
1: मार पिटाई
0: जी, तो यही सब बातें हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं हम अपने आसपास जो माहौल देखते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसी से शुरुआत होती है। तो दोस्तों अब जो है हमने क्लस्टर ए की बात की, क्लस्टर बी की बात की, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये आप सभी जान चुके हैं। तो क्लस्टर सी जो पेंडिंग रह गया है तो उसको मुझे लगता है मैम कि अगले हमें एपिसोड में बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी, तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम क्लस्टर सी के बारे में आप सभी के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत ही खास बातचीत के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अब दीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। तो दोस्तों अगले हफ्ते इस बात को जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो हमने बातचीत की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में पनप रही होंगी, उठ रही होंगी, बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे होंगे, जैसे मेरे मन में भी अभी बहुत ज्यादा सवाल कि नहीं, हम तो आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जो मैम ने साइंस एंड सिम्टम्स बताए, तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, 9354134057।
0: और अगर आपको लगता है कि फोन पर हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली सेंटर आ सकते हैं और सेंटर में आके अपने सवालों के जवाब, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। हमारे सेंटर का पता रहेगा
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, अपोजिट मांझी पुल, धर्मशाला।
0: जी दोस्तों, तो नंबर भी आप सभी तक पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी आप सभी तक पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है, सवालों के साथ फटाफट से फोन उठाइए और कॉल कर दीजिए या तो सेंटर पहुंच जाइए। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात इसी बातचीत के साथ, तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने मन की।

0: दोस्तों 91.1 ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और ढेर सारी जानकारियों से भरपूर प्रोग्राम्स हर दिन आप सभी एंजॉय करते हैं। और अब समय हो गया है समाचारों का, तो आइए दोस्तों सुनते हैं समाचार।
1: नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 저 씨.
1: 잠깐이나.
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो।
0: hey, तुम घबराए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई

0: इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक। केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोता 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: जानी नहीं।
1: श्रोताओ 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।
2: Mixing in the house.

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, अप्पा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा, अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर। सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ, पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

यह तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन देन कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारी यही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

तोहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोतो तोहां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तोहां सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तुहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इयां ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?

0: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है?
2: माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
0: आके बोलता हूँ पक्का।
2: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
0: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
2: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
2: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: से
1: चौक करना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: हुँ? ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? पापा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? पापा, पापा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: पापा, पापा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चौसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो, जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम लेकर आऊ तुम अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुका हिंदी अपनी गप्पा लेकर तो बहुत बहुत स्वागत है सभी हुनने सभी लक्ष श्रोता रहा जितने भी श्रोता हूँ कर देना श्रोताओं आज है पूजन बरसड़ जो जी इतों थोड़ी करी प्रूह पैंता तड़ी पूजन तस ग्रामंज पूजन क्या गलबात बुने क्या इस ग्रामंज कोना सु खास मोड़ वा सो तुसु जरूर दस लै लेकिन अय्या पहले आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीत दसोगे
1: Yeah!

0: सामुदायिक वीडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तुम अपना आरसे वीडियो जो की सचिन कपूर हा। ता आजा है बरसर पुजन और बरसर मा आजा सो के इंदे अम्मा भी खुरे ना ता अम्मा जी तुंदा कार्यक्रम मंच स्वागत है।
1: धन्यवाद तुझ बोले
0: जी। अम्मा जी तुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और शो तो हमारी खास खूबी तुसु दसना चाहता, खास खूबी है कि अब मैं 50 सालों की सो नुआचड़ी लो रहा। और अम्मा तुम दी हबजू उम्र कितने?
1: 17 साल वाले।
0: 17 साल
1: अच्छा, फिर बेटी है बच्ची है क्या फिर को चाहिए तो?
0: अपनी कजो की पुराने बुजुर्ग ना और ना बंदी थी इतनी याद की कितने साल रहे कितने साल रहने ने। लेकिन
1: याद न थे बालना
0: मतलब बड़ी यूनिक गल है श्रोतों कि 50 साल नुआचड़ी लो रहे और लगभग लगभग है जो एसटी वेट लाउंदा है हमारा।
1: हां अच्छी ना बल्ले तो 60 तक कर गया गई ना।
0: हां तूने तो 65 साल मतलब हमारी उम्र है 65 ऊपर लगो कर दिया। तैया बहुत सारी गलबात करने हम हो गए लेकिन हम देने प्यारे दे गीत।

0: अपने आधा ही है ना जो दिमाग के काम है ना,
1: दिमाग के काम
0: है। अच्छा आशा ना आशा जिसमें काम करू रहना।
1: अच्छा
0: खाने ना बहुत करड़े हुंदे बने प्यारा चाचा बालना लड़की जो बह।
1: अच्छा
0: घर ना छड़नी हुई घर जबर बुझे गाना कि गलत बलो अपनी बहार आओ कड़नी जा बहार आ रही अंदर जो आने अंश बदंदा ना इंदा तो अगे इंदुरा दुध ना बदंदा अब पार गल पूरा टाइम तो सब कुछ बदे अच्छू कर अपना सत के ना बच्चा सो सत
1: ये शो तुम कार्यक्रम चो आगो बढ़ंदन और अम्मा तुम और गल बात कर ले हुंदन है प्यारे दिया गीत।

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब हुनु गर्दन अपने होस्ट और दोस्त सचिन कपूर सो गे और आचा सह जी अथम पुठे बरसर मंच न ता ब्रिकमा जी हो गया है गलबात करू गर्दन। ब्रिकमा जी अबे वे बे अंदर ते पहले रे बे अंदर क्या तू सो फर्क लग
1: फर्क क्या लगंदा ना ये नवा जमाने रा मोटर लगे साये न पुराने के थे जो लाज शर्मा सब कुछ थे अबे न थे ना अबे सो जरूरी ना ये ता सो जोंड ना पाने जट्टी ना पाने के मने कत्ती थम ना पाने अच्छा डाडा साल जोंड ना को आड़ दे रहा हूं दे ता जोग न बुंदा
0: जोग न बुंदो
1: के गलत बात हुआ
0: बिल्कुल ठीक है
1: हां अगर क्या बोलना सोचा है ना कि बका हो गया ना जल पाल ना कंदी ये गेर ना कंदी अब समाज ही ना जल भी तो क्या बाल लड़ा और कन्ना रे जोड़े टाउने भी है तो मेरी गाल के कुछ याम चल रहे हैं
0: ना ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तो है
1: हाँ जदार ना मैं कुमारी 13 साल जदार चार रुपये बगैर बूढ़ा था मेरा 6 साल लगे बिचौरे सात उम्र लग गया था मरी बूढ़ा
0: अच्छा
1: हाँ जब आए के पालू रा सो 15 महीने रा छोटू रा मैं फिर भी सो के मैंने आर्मी की नौकरी में ठोकी था अच्छा हाँ आज माते यार ना दिमाग बड़ा तेज तू मेरा अब है ना तेरा तो थाई करिए तुम्हारे रेंदे घुमाई छी जाए और लगते सभी किनारे
0: ताइए छो तो और गल बात कर ले हूं देने प्यारे दे

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए जी ब्रेक में जी होगी गल कर दें इं दसो कि इं 13 साल के आसो दार अंदर गोरु चल रहे
1: गोरु चल रहे नहीं चल रहे हां
0: तो अमा तक ने क्या क्या मतलब यूनिक क्या क्या अलग हुंदा तो दार अंदर जो आज नहीं
1: दार अंदर या वो हुक्का रुक्का खाना लून सुलूना दूध दही बुना सब पीते गुरोड़ने मानना ना या अब तो डुप्लीकेट मशीन ना चली पी रही कि प्यारा मान दी जाता दूध बुंदा हो प्यारा गेहूं भी बड़ा हो रही बाजारा बुंदा
0: अच्छा
1: लगता
0: कार्यक्रम जो और यूनिक गल्ला के सो अम्मा तो जान ले हुन लेंदे ने प्यारे दे गीत

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूर। हमें जी क्या बोलना चाहते हैं बोला?
1: ये त्राय पाल भी नहीं, मैं आख मैं जोटी ना अपने मित्र सजना हो आंदे सो मैं कच्ची लाई करी कुमार का मत है राखा पजाई कच्ची लाके बच्चा
0: क्या बात है।
1: हां किदा नहीं जाता बच्चे राख 18 महीना गिरंदा।
0: अच्छा
1: हां अगर के आदा था चलना आ रे ना था
0: चलना
1: इंदा टाइम थी चूड़ा है थी एक मौका।
0: अच्छा ये जो डायलॉग मारो एक मौके फिर ये दस्ता कौन दिन डायलॉग
1: याने रे तुम्हारे से ना तो सियाने री हकरी।
0: अच्छा तेरा क्या मतलब हुआ?
1: तेरा क्या मतलब हुआ जा याने रे तुम्हारे साये री गाना ना सियानी हकरी ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ बंदा सौना बंदा कोटलू ते पैंट चूड़ा रान ना संजा गटन ते ना बिछान।
0: क्या बात है।
1: बुरा बंदा दौड़ू खेरा रान संजा गटन बे ते बिछान बे।
0: क्या बात है क्या गल है। अब बड़ा मजा है छुंदा तुसो के गा।
1: हां गा कुमार दिया ने मुया रान आया ये बात रही गया बोले
0: आइए श्रोता
1: ये कुड़िया भी ले खान दे ना उठाले छोकरा। ये सब बुटिया ना मन करने वाले।
0: उम्मीद करते अपने अपने घर अंदर लेनो हूं अगला प्यारे दे गीत।

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सब ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 MHz पर हमें बस पूछ गो ना
1: धन्यवाद
0: और कुछ गल होना ने अपनी पुरानी
1: कना कोई पर पुरानी रम जो कोई पता ना ले मिट्टी बोरी आ
0: कोई
1: पुराना पुराना मन भूखी जी तुरे ते पुरानी गल्ला भी जड़ी हुई अगर ना होए ना जिटा नटना
0: नो मन ना
1: हां ये कमल फुल्ला पर नचना है भरड भरड भरड भरड कर ले
0: क्या बात है ता श्रोतो हम बड़ा मजा आसू भी गलबात करने रहा और मैं पुरानी गल्ला भी दसी और हमारी जो यूनिकनेस आसो है कि मैं 50 साल तो किया सो नुआसड़े लो रहा और आज अम्मा मुझे लगता कम से कम 70 साल रही अम्मा आसू लगो कर दे लगभग लगभग तो ये यूनिकनेस थे ठहर थे अम्मा हो गई गलबात करें हमारा इंटरव्यू लियो है उम्मीद कर दें तुम वो इंटरव्यू पसंद आ गुना हमारी गल्ला पसंद आई गुणी है ना तो अमां भाई लेंदे इजाजत चल पेंदे ना ठीक है अमां धन्यवाद
1: हाँ धन्यवाद मार्को वे तू चुगल है
0: जी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अब 2 लाख से कम आय वाली महिलाएं ही पात्र होंगी इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि की। 24 घंटे खुला हिमाचल, 1500 की गारंटी लागू। हिमाचल में पहली बार डिजिटल जनगणना, अब लोग खुद भर सकेंगे अपना डेटा। हमीरपुर के युवा आशु ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया भारतीय तिरंगा, देश व प्रदेश का बढ़ाया मान। पंचायती राज चुनाव संवेदनशील बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए अब 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को समाहित कर एक अवैध बॉर्डर का सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम कर रही है। मंत्रालय बहुत जल्द ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरा और अन्य नई तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को देश के सामने लेकर आएगा। इस पहल से घुसपैठ व तस्करी को रोका जा सकेगा। ये पहल केंद्र सरकार पाकिस्तान व बांग्लादेशी सीमावर्ती इलाकों से लागू करने की तैयारी कर रही है। आचार संहिता के बीच शुक्रवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक ने प्रदेश की राजनीति, रोजगार और अर्थव्यवस्था तीनों की दिशा बदलने वाले फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने एक साथ ऐसे कई बड़े निर्णय लिए जिनका असर सीधे लाखों परिवारों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला प्रदेश भर में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का माना जा रहा है। पर्यटन राज्य हिमाचल में ये निर्णय व्यापार, होटल, परिवहन और रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब जनगणना का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। पहली बार प्रदेश में डिजिटल तकनीक के जरिए जनगणना होगी, जिसमें आम लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को हाईटेक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगी। इससे पहले 1 जून से 15 जून तक लोगों को स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण, शहरी विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात कर विकास के आधुनिक मॉडलों पर विस्तृत चर्चा की। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम मानी जा रही इस बैठक में दोनों राज्यों के जनकल्याणकारी योजनाओं, स्मार्ट शहरी मॉडल्स, सड़क निर्माण तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। हिमाचल के युवाओं में प्रतिभा, साहस और जुनून की कोई कमी नहीं है। इसका ताजा उदाहरण हमीरपुर जिला के युवा आशु ने पेश किया है। करीब 23 वर्षीय आशु ने नेपाल स्थित विश्व प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के कठिन ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर भारतीय तिरंगा लहराया है। पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने

के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शुक्रवार को सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर चुनावी व्यवस्था का जायजा लिया। बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान एवं मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में इन दिनों आग का ऐसा तांडव मचा है जिसने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। तापमान बढ़ते ही जंगल धधकने लगे हैं और मई महीने में ही प्रदेश भर में आगजनी के 148 मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी। देश भर में वायरल हो रहा यह डिजिटल ट्रेंड अब हिमाचल के युवाओं, खासकर जेंजी और बेरोजगार अभ्यर्थियों के बीच भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है। प्रदेश के सीमांत एरिया 10,000 से अधिक भूमि पर हिम चंडीगढ़ शहर बसाया जाएगा। हिम चंडीगढ़ शहर के लिए 8,000 बीघा भूमि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिम चंडीगढ़ शहर के लिए 8,000 बीघा भूमि ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दी है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर हरियाली लाने की विभाग ने तैयारी की है। इसके लिए विभाग ने 600 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत विभाग बड़े पैमाने पर प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाएगा। धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित कार्यक्रम की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आमजन को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति जन समर्थन तैयार करना है। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर मचा विवाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। 21 जून को होने वाली री नीट यानी दोबारा नीट परीक्षा से पहले एजेंसी चौतरफा दबाव में है। पेपर लीक के आरोपों के बाद अब एनटीए हर कदम बेहद सतर्कता से उठा रही है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार एजेंसी जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए पीजी परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार अब छात्र 25 मई तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति वीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी में हैं, वे अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। इस पे बेंच का कहना है कि आरक्षण में आर्थिक के अलावा सामाजिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के बच्चों का आरक्षण मांगना सही नहीं लगता है। नगर निगम शिमला में हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे नियम लागू कर दिया है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए 800 कर्मचारियों को अगले महीने 23 दिन का वेतन मिलेगा। निगम प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। निगम का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौटे, इसके बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब स्किल सब्जेक्ट के रूप में एआई विषय पढ़ेंगे। इसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने कदमताल तेज कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के धर्मशाला मुख्यालय में इसको लेकर एक्सपर्ट्स का सेमिनार भी शुरू किया गया है। सेमिनार में विशेषज्ञों के सुझावों के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री भी महंगी हो गई है। ईंट से लेकर बजरी तक के रेट में भारी इजाफा होने से निजी और सरकारी निर्माण कार्यों में इसका सीधा असर पड़ेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह तक शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के बाद विभाग ने ये निर्णय लिया। जिन शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी नहीं लगी है उन पर ये निर्णय लागू होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों के लिए ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के निर्देश जारी किए हैं। चालक परिचालक अब बस चलाते समय गले में किसी भी प्रकार का रंगीन कपड़ा या पटका नहीं डाल सकेंगे। सिर पर कपड़ा बांधने पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: पुराने

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में।

गुड इवनिंग धर्मशाला। जी हाँ, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहता है ये कार्यक्रम और हम रहते हैं इसमें आपके साथ। लाइव कार्यक्रम शुरू हो गया है गुड इवनिंग धर्मशाला 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, आज हम पहुंच गए हैं 23 मई में। जी, 2026 में 23 मई का ये आज की शाम है और हमारी संध्याकालीन सभा शुरू हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सही सलामत अपने अपने घरों में पहुँच गए होंगे और जो लोग भी हमारे भाई बहन रास्ते में हैं वो भी सही सलामत अपने अपने घरों तक पहुँच जाएं। और उन सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक जो किसी न किसी ख़ास वजह से आज का अपना ये ख़ास दिन मना रहे हैं।

और हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर हम मौसम की बात करें तो जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे बताते हैं कि मौसम कैसा है, क्या और आगे आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, तो इस समय तो 30 डिग्री सेल्सियस दिखाया जा रहा है मौसम। मतलब बाहर तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 31%। तो श्रोताओं, आप तो देख ही रहे हैं क्या हालचाल है मौसम के। कभी ये जो है बरसात कर देता है और यही मौसम है बाई गॉड से हमें ना थोड़ा सा नासाज कर रहा है, तबीयत को ख़राब कर रहा है। कभी हम आइस क्यूब्स डाल करके कोई शरबत पी लेते हैं, गला बैठ जाता है और जुखाम होने जैसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें गर्म पानी पीना चाहिए। भैया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मई का महीना ख़त्म होने वाला है, केवल रह गए हैं 7 दिन और, नहीं 7 या फिर 8 दिन। इकतीस मई ने हमसे पीछे से आके कहा कि भाई अब मैं भी हूँ, मुझे क्यों भूल गए। और आज हम कार्यक्रम में बात भी करेंगे, पहाड़ों में बढ़ती गर्मी ने बदली है अपनी जीवन शैली। गर्मी में आयुर्वेद बन रहा है या फिर बन सकता है आप सभी का सहारा। तो इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में करना क्या चाहिए, और ये जो मौसम है आ रहा है जा रहा है, कभी गर्मी आ रही है कभी रुक जा रही है, तो इसका इलाज भी हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अगर हम एज्यूम कर लें कि गर्मी नहीं है और हम पहाड़ों की तरफ देखें, वहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है उसकी ओर नज़र डालें, अगर आपके यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, हमारे धौलाधार रेंजेस या फिर कोई भी पहाड़ हो, देखें और एज्यूम करें, क्योंकि कहते हैं ना एज्यूम करने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो हम अज्यूम करें कि हम गर्मी में नहीं हैं, किसी ठंडे ठंडे से स्थान पर हैं। तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये वाला गीत, और इस गीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए, साथ साथ में अपनी आंखों के सामने वो दृश्य भी लाइए, और इससे आपको जो गर्मी है उससे राहत भी मिलने वाली है। कार्यक्रम के आखिर में, गीत के आखिर में पूछेंगे ज़रूर आपसे हम, तो बिल्कुल दिल लगा के सुनिए इस गीत को। समझ तो गए होंगे आप अभी इसका म्यूजिक सुन करके कि गीत कौन सा बजाने वाले हैं।

वैसे देखिए कश्मीर की बात करके हम अपने धौलाधार रेंजेस को कम नहीं आंक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ना, जो थोड़ा सा और दूर बैठे हैं, जिन्हें धौलाधार रेंजेस नज़र भी नहीं आती हैं, हम तो थोड़ा सा पास में है ना, तो उनके लिए ये गीत मस्ट है।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। तो ये लिए नजारे आपने कश्मीर के, तो ये कैसा लगा आप सभी को? उम्मीद करती हूँ गीत भी पसंद आया होगा, वाइब्स भी आपने ले ली होंगी और ठंड भी लग रही होगी थोड़ी थोड़ी सी सोच सोच के। बस यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, देखिए कहां कहां घुमा देते हैं हम आपको बातों ही बातों में। चलिए, मैंने आपको ये तो कह ही बता ही दिया कि पहाड़ों में बढ़ती गर्मी ने जीवन शैली को बदल दिया है और इसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन आज विश्व कछुआ दिवस भी है और हमारा जो आज का विचार है तो हम एक छोटी सी कहानी के रूप में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कछुआ हमें जीवन की सबसे गहरी और व्यवहारिक सीख देता है। श्रोताओं, कछुए से जुड़ी एक बेहद प्रेरक लघु कथा और उससे मिलने वाले जो विचार हैं वो तो आपको पता ही है ना? वही कछुआ और खरगोश की कहानी, कि वो रास्ते में सो जाता है ये सोच करके कि कछुआ तो कहाँ भाई रेस में जीत पाएगा, तो मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, सो जाता हूँ और बड़ी देर तक सोता रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे लगातार चलता हुआ जो कछुआ है वो रेस को जीत जाता है। ये कहानी पता है ना आप सभी को, जानते हैं ना? तो देखिए, अब हम एक ही कहानी की लकीर क्यों पीटते रहें, एक और अनोखी कहानी है हमारे पास, सुनना चाहेंगे आप? भाई हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपको सुनवाने के लिए। तो लीजिए, हो जाइए अटेंटिव। एक बार जंगल के सभी जानवरों के बीच एक चर्चा चल रही थी कि सबसे सुरक्षित जीव कौन सा है। तो फिर क्या हुआ, कछुए ने धीरे से आगे आकर कहा, ईश्वर ने मुझे सबसे मजबूत कवच यानी कि शल दिया है, जब भी कोई खतरा आता है तो मैं अपने पैर और सिर इसके अंदर छुपा लेता हूँ और सुरक्षित हो जाता हूँ। पास ही बैठा एक खरगोश हंस पड़ा और बोला, कछुआ भाई, तुम्हारा ये कवच तो तुम्हारी सुरक्षा तो करता है, लेकिन ये बहुत भारी है, इसकी वजह से तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, अगर तुम्हें कहीं दूर जाना हो तो तुम्हें तो हफ्तों लग जाते हैं, तो फिर ऐसी सुरक्षा का क्या फायदा जो तुम्हें खुल करके जीने और दौड़ने की आजादी ही ना दे। और फिर क्या हुआ, अभी जानना चाहोगे या सुना दूं एक गीत उसके बाद? नहीं, हमें लगता है कि अभी ही बता देना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है आपको शायद इधर उधर कुछ काम करने जाना हो और फिर आप बोलेंगे भाई गीत भी निकल गया और वो जो आगे कछुए ने जो सुंदर सा जवाब दिया वो भी हम नहीं सुन पाए। तो सुनिए ध्यान से, कछुआ बोला, मित्र, ये भारी कवच मेरी कमजोरी नहीं, मेरा धैर्य है। ये मुझे सिखाता है कि भले ही मेरी रफ्तार धीमी हो, लेकिन मेरे पास खुद को सुरक्षित रखने और टिके रहने वाली ताकत है। मैं दौड़ में किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए चलता हूँ। जब तूफान आता है तो तेज दौड़ने वाले भी छिपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन मैं जहां होता हूं वहीं अपने घर में सुरक्षित हो जाता हूं।
1: और सभी जानवर कछुए की इस बुद्धिमानी को देख करके हैरान हो गए।
0: तो क्या लगता है आपको, मान ली होगी उन्होंने कछुए की बात कि हाँ कछुआ जो है वो सबसे सुरक्षित जीव है इस धरती पर?
1: देखिए भाई, कछुए ने ये जो कहा ये तो बिल्कुल सच ही कहा, लेकिन कछुए में एक ये योग्यता भी तो है ना कि उस शेल में वो अपने आप को छुपा लेता है और हमें ये सीख भी देता है कि अगर आप पर भी, जैसे हम पर भी कोई परेशानी आए या कोई भी इस तरह का आक्रमण करे शब्दों के बाण से, वैसे तो कौन आक्रमण करता है इस तरह से, तो हमें भी अपनी सारी इंद्रियां सब कुछ अपने अंदर समेट लेना चाहिए। दो पल के लिए हमें शांत हो जाना चाहिए, सामने वाले से बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए और फिर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हुआ। हो सकता है कोई मेरी बात किसी को बुरी लग गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अपना दोस्त चुना वो गलत था और वैसी जो दोस्ती है वो आपको नहीं रखनी चाहिए थी। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, उस चीज़ का निरीक्षण कीजिए और फिर पहले खुद में कमियां देखिए कि कहीं आप ही तो गलत नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे अपने आप को समय दीजिए, फिर अपने शेल से बाहर निकलिए और फिर दुनिया का सामना कीजिए दोबारा से एक बार।

फिल्म का नाम है गवाही। अनुराधा ओडवाल और पंकज उधास की युगल स्वर।

पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आपने सुना अभी गवाही फिल्म का ये गीत। ज्ञानवी 2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। गीत जो आपने सुना उसमें संदेश ये मिलता है कि अक्सर दो लोगों के बीच में दूरियां सिर्फ इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि कोई पहल नहीं करता। जब तक कोई प्यार से पूछेगा नहीं तब तक दूसरा इंसान अपने दिल के दरवाजे खोलेगा नहीं, और कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक जीवन के अनुसार तो इसका जवाब कि दिल की बातें किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, तो इसका जवाब ना हाँ है और ना ही पूरी तरह से ना, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ये एक इंसानी स्वभाव है और इंसान के स्वभाव के उस रूप को दिखाता है कि जहाँ एक प्रेमी अपने दिल के सारे राज, अपनी कमियाँ और अपनी मोहब्बत सिर्फ इसीलिए छुपा कर बैठा है क्योंकि सामने वाले ने कभी फुर्सत से उससे पूछा ही नहीं। जब हम अपनी परेशानियाँ या फिर भावनाएं अपने अंदर दबा कर रखते हैं तो वो मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी का रूप ले लेती हैं। किसी भरोसेमंद से बात साझा करने पर दिल का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। परंतु अक्सर होता पता क्या है, आप जिससे बोझ साझा करते हैं और जो सामने वाला सुन रहा होता है दोनों ही ताक पर बैठे होते हैं, मतलब कि एज पर। मैं आपको कैसे समझाऊँ कि जो अपनी बात को कर रहा होता है उसे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ये जो मेरी बात है ये बाहर ना चली जाए, और जो सुन रहा होता है उसे भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई और तो बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि भाई यहाँ से कोई बात निकली है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि न जाने उस व्यक्ति ने अपने दिल की बातें और किस किस के साथ साझा की हों।

और जब आप किसी के सामने अपनी कमजोरी या फिर अपने जज्बात खुलकर रखते हैं तो दोनों के बीच का भरोसा और ज्यादा मजबूत होता है। इसे वल्नरेबिलिटी, क्षमा कीजिए, वल्नरेबिलिटी कहते हैं, जो सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी कभी हम अपनी ही समस्या में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें समाधान ही नहीं दिखता, और दूसरों को बताने पर हमें एक नया रास्ता और सही रास्ता भी मिल सकता है। अब क्यों किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसके बारे में करेंगे बात फिर कभी, या फिर शायद हो सकता है इसी कार्यक्रम में कर लें। फिलहाल अब देखिए ना, ये भी है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। और हम तो अपनी सारी दिल की बातें खोल करके आपके सामने रख ही रहे हैं, तो बातों बातों में कब 6:30 हो गए हमें पता भी नहीं चला। और अब लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

हर इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता है। अगर आपने अपनी कमजोरी या गुप्त बातें गलत व्यक्ति को बता दी हैं, तो भविष्य में उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ या आपका मजाक उड़ाने के लिए भी कर सकता है।

और कुछ लोग आपकी स्थिति को समझने के बजाय आपको जज करने लगते हैं या फिर मुफ्त की ऐसी सलाह देने लगते हैं जिससे आपकी मानसिक परेशानी और बढ़ जाती है। परंतु हाँ, अगर कोई आपको सही सलाह दे तो उसे मान भी लेना चाहिए। और हर छोटी बड़ी बात दूसरों को बताने से हम अपने फैसले खुद लेने की क्षमता खोने लगते हैं, मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं।

तो दोस्तों बात सिर्फ उसी से कहें जो बिना आपको जज किए पूरी निष्पक्षता से आपकी बात सुने, जैसे कि माता पिता, एक सच्चा और पुराना दोस्त या फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलर। हर बात हर किसी को बताने के लिए नहीं होती है। अपनी प्राइवेसी यानी निजी जीवन के कोर सीक्रेट्स होते हैं, उनको हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जैसा कि हमने पहले कछुए के बारे में बात की थी कि बाहरी दुनिया के लिए एक मजबूत कवच रखें,

तो देखा दोस्तों कि जो डूबने नू डूब दिंदे उन सहारियां च की रखिया है ते बाहरी दुनिया के लिए एक मजबूत कवच रखें ताकि हर कोई आपके भीतर की कोमलता को ठेस ना पहुंचा सके, लेकिन अपनों के सामने उस कवच को हटा करके कछुए की तरह खुलकर जिए।

हरजीत हरमन की आवाज़ में सुना आपने अभी ये पंजाबी गीत 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। जी श्रोताओं, अब बात करते हैं हम इस गर्मी की। तो देखिए, अब गर्मी बन गई है सेलिब्रिटी। हिमाचल, जिसे कभी अपनी ठंडी आबोहवा, देवदार की सुगंध और प्राकृतिक शीतलता के लिए जाना जाता था, अब बदलती जलवायु के प्रभावों को तेजी से महसूस कर रहा है। अब जिधर की हवा है उधर उधर हम भी सोचते हैं वहीं वहीं चला जाए जहां जहां हवा है ना। तो जिन पहाड़ी क्षेत्रों में कभी गर्मियों के दौरान पंखे की आवश्यकता भी महसूस मुश्किल से पड़ती थी, अब वहीं मई जून में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। मैदानी इलाकों जैसे गर्मी अब पहाड़ों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करने लगी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक तेजी से हो रही है और इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि मानव स्वास्थ्य, जल स्रोतों, खेती और पारंपरिक जीवन शैली पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

आधुनिक विज्ञान जहां हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और मानसिक थकान जैसी समस्याओं की चर्चा कर रहा है, वहीं आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले ही ग्रीष्म ऋतु में शरीर की शक्ति क्षीण होने, जल की आवश्यकता बढ़ने और दिनचर्या बदलने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। जी श्रोताओ, बिल्कुल, अब हम बात करेंगे आयुर्वेद से कैसे अपनी दिनचर्या को हम ठीक रख सकते हैं गर्मियों के मौसम में भी। वैसे तो यहाँ पर गर्मी अक्सर सीमित मात्रा में ही होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति तेजी से बदल रही है। निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ जल स्रोतों का कमजोर होना, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ना और हीट स्ट्रेस से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं अब आम होती जा रही हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक तीव्र हो सकती हैं। खेतों, निर्माण स्थलों, सड़कों और पर्यटन उद्योग में लंबे समय तक कार्य करने वाले लोग लगातार धूप के संपर्क में रहते हैं। उससे कि निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और आपको पता है आयुर्वेद में तो ग्रीष्म ऋतु को आदान काल भी कहा जाता है। उसका अर्थ ये है कि जब सूर्य और वातावरण शरीर की ऊर्जा और स्निग्धता को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। चरक संहिता के अनुसार इस ऋतु में शरीर का बल घटता है और वात दोष का संचय बढ़ने लगता है। और इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो अत्यधिक गर्मी के कारण लगातार शरीर पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा रखने का प्रयास करता है। इससे शरीर में जल, सोडियम, पोटाशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लग जाती है। परिणाम स्वरूप थकान, सिरदर्द, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, पाचन कमजोरी और हीट स्ट्रोक्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ज्यादा गर्मी केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। कई शोध बताते हैं कि तापमान बढ़ने के साथ तनाव, बेचैनी, गुस्से की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है और इसे ही आयुर्वेद में पित्त वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। तो श्रोताओं, ये रही बात की आखिरकार गर्मी के दिनों में क्या क्या होता है और क्यों होता है हमारे शरीर के साथ।

0: आगे की बात करेंगे फिर से एक खूबसूरत गीत के बाद। प्यार का मौसम फिल्म का नाम है आशा, पारिख ने इसमें अभिनय किया और मोहम्मद रफी तथा लता मंगेशकर ने गाया है गीत।
1: डाउनलोड कर...

तो श्रोताओं, मौसम तो भाई गर्मी का है और जो लोग इस स्थिति में होती हैं, जैसे कि गीत चल रहा है, तो ये नहीं देखते हैं कि क्या मौसम है, कौन सा मौसम है। इन्हें तो बस सब जगह कहते हैं ना, हरा ही हरा दिखता है।

0: बिटिया सुन सुन के
1: प्यार का मौसम फिल्म के इस प्रसिद्ध गीत निसुल्ताना रे में ये जो गैप आया है ना बीच में निसुल्ताना रे संगीतकार आर डी बर्मन द्वारा भावनाओं को तीव्रता देने के लिए इस्तेमाल किया गया एक अनूठा तरीका है तकनीक है निसुल्ताना रे और ये जो ठहराव या फिर म्यूजिकल ब्रीदिंग स्पेस इसको कहा जा सकता है न केवल श्रोताओं को सुकून देता है बल्कि गानों में प्रेमी प्रेमिका की तड़प और संवाद को भी उजागर करता है और ये गैप हमें जीवन में रुकने और रिश्तों में थोड़ी जगह यानी स्पेस रखने की महत्वपूर्ण सीख भी देता है जो इस क्लासिकल गीत को और भी क्लासिक और ख़ास बना देता है और देखा आपने इसका जो अंत हुआ वो कैसे हुआ तो बस यही आपको बताना चाह रहे थे हम 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला मेरे यानी ज्योति पठानिया के साथ।

तो श्रोताओ, हम बात कर रहे थे गर्मी के मौसम की। तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, क्यों होती हैं, वो तो हमने आपको बता दिया है ना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आयुर्वेद जो है वो केवल ये नहीं बताता है कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी समझाता है कि कब, कितना और क्यों खाना चाहिए। यानी कि हमें भूख तो है नहीं और हम सोचते हैं कि भाई सुबह से तो हमने कुछ खाया नहीं है, तो ऐसा करते हैं कुछ खा लेते हैं, भूख लगने पर ही खाएंगे ना आखिरकार। और अगर पूरा दिन भर कुछ नहीं खाया तब भी भूख नहीं लग रही है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है, उसमें भी आपको अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो दिखा के आएं डॉक्टर को, अगर आप एलोपैथी में नहीं जाना चाहते तो आयुर्वेदिक में जाएं। तो आधुनिक शोध तो इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि मौसम के अनुसार भोजन और जीवन शैली बदलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गर्मी में अत्यधिक ठंडे पेय और बर्फ वाला जो पानी होता है वो क्षणिक राहत तो देता है, लेकिन इससे पाचन शक्ति प्रभावित हो जाती है। जी हाँ, हम बिल्कुल इस बात को जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जरा सा भी अगर हम किसी भी पेय में अगर एक भी आइस क्यूब डालकर पी लेते हैं ना, तो गले की बैंड बज जाती है अगले दिन। उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हमने क्या किया। इससे अच्छा तो आयुर्वेद कहता है मिट्टी के घड़े का शीतल जल पी लो, जो कि मेरे घर में तो तीन तीन हैं। और आपको सच बात बताऊं, अभी थोड़ी दिन पहले मैं राजस्थान गई थी तो हम लोग अपनी गाड़ी में ही गए थे, और गाड़ी में भी एक छोटा सा मटका घड़ा स्पेशल खरीद करके रख के लेकर गए थे अपने साथ, ताकि हम रास्ते का बिल्कुल भी जो ठंडा पानी है खरीद करके बॉटल ना पिए। उसी से हमने काम चलाया और वापसी में भी ऐसा ही किया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने पहले भी यहाँ से ये बात बताई है आपको, अपने ये जो दोस्त है मेरा माइक इसके थ्रू, ये बड़ा अच्छा दोस्त है भाई, ये सारी अच्छी बातों को आप तक पहुंचा देता है। तो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी है वो अब केवल मौसम नहीं बल्कि स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती बन चुकी है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शरीर को पर्याप्त जल, संतुलित भोजन, विश्राम और प्रकृति के अनुसार जीवन शैली की आवश्यकता भी है। यदि लोग अपनी जीवन दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव कर लें तो भीषण गर्मी के बीच भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। तो आयुर्वेद का मूल संदेश प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाना है, और आने वाले समय में यही संतुलित जीवन शैली एक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान बन सकती है। देखिए ना, नींद और मानसिक संतुलन भी जरूरी है। गर्मी के मौसम में अनिद्रा और बेचैनी बढ़ना सामान्य माना जाता है। देर रात तक मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का उपयोग नींद की गुणवत्ता को और ख़राब करता है। पर्याप्त नींद शरीर के तापमान नियंत्रण, हार्मोन संतुलन और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। रात में हल्का भोजन करके शांत वातावरण रखें और सोने से पहले ठंडे पानी से हाथ पैर धो लें और मोबाइल को बिल्कुल भी टच ना करें, तभी आपको नींद आएगी।

जोगी शब्द किसी सन्यासी या भस्म रमाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस ईश्वर, रूहानी गुरु या फिर खुद इंसान की अंतरात्मा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

तो देखो दोस्तों, कछुए की तरह शांत होने और दिल की बातें सही पात्र से कहने की बात की थी हमने पहले, है ना। तो ये गीत भी उसी बात को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है।

ये हमें सिखा रहा है गीत की बाहरी दुनिया के शोर को शांत करके जब हम अपने भीतर के जोगी यानी अपनी अंतरात्मा से संवाद करते हैं तभी हमें जीवन का असली सुकून और आनंद मिलता है। तो आप में से किस किस ने लिया है ये आनंद?

गुरदास मान अपने गानों में हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं। जोगिया विजोगिया में ये संदेश दिया जा रहा है कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेने या फिर बाहरी दिखावा करने से कोई जोगी सिद्ध पुरुष नहीं बन जाता।

और इसी गीत के साथ अब हम भी चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। और वो भी ये समाचार जो है ये भी हमारे इसी कार्यक्रम का एक पार्ट है। तो बस जल्द मिलते हैं हम समाचारों के बाद। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े

0: मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

तो श्रोताओं, अब समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आ गए हैं करने आपसे बातचीत। गए कहीं नहीं थे, हम यहीं पर थे, परंतु आपको पता है ना, जानकारियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जानकारियां आपने ले ली हैं और मौसम का हाल क्या रहने वाला है आगे, वो भी आपको पता चल ही गया है समाचारों के थ्रू। अब क्या किया जाए, आपसे करें बातचीत या फिर सुनवाएं आपको खूबसूरत सा गीत। तो चलिए, कार्यक्रम में पहले गीत सुनवाया था ना हमने आपको, कि थोड़ा सा हमने एक माहौल सा बनाया था कि भाई आपको थोड़ी सी ठंड लगे, गर्मी में ठंड का एहसास करवाया था। तो होता ये है कि जैसा भी मान लो, अगर आप मान लोगे, कहते हैं ना कि मान लो दिन है तो दिन है, मान लो रात है तो रात है, मतलब दिन को भी आप रात में बदली कर सकते हो, बस सिर्फ खेल है मानने का, अपनी सोच का। तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहाँ पर, ये देखिए ना, अनुरोध फिल्म के इस गाने में जिसे गाया है किशोर कुमार ने,

जी दोस्तों, अब आप भी सोचेंगे कि हमें गर्मी के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया गया, ऐसा होता है, वैसा होता है, आयुर्वेद ऐसा करता है, लेकिन आखिरकार इस चिलचिलाती हुई गर्मी में करना क्या चाहिए, लेना क्या चाहिए, खाना क्या चाहिए, वो तो बताया ही नहीं।

जी हाँ, आपका दिल और आपका शरीर भी तड़प रहा है इस गर्मी में, है ना, कि कुछ भाई ठंडा ठंडा सा हो जाए। तो भीषण गर्मी में शरीर को केवल पानी की ही नहीं बल्कि पर्याप्त ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में पारंपरिक पेय और स्थानीय फल शरीर को भीतर से ठंडक देने के साथ साथ निर्जलीकरण से बचने में भी सहायक हो सकते हैं, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। सत्तू का पेय, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत, आम बना और स्थानीय फलों का रस गर्मी में बेहद लाभकारी माने जाते हैं। ये पेय शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ आवश्यक खनिज और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।

0: श्रोताओ, जिन खाद्य पदार्थों को दुनिया सुपरफूड कह रही है वो तो हिमाचल की पारंपरिक खान पान संस्कृति का वर्षों से हिस्सा रहे हैं। स्थानीय फल न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि गर्मी के दौरान शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सेब फाइबर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है, जबकि खुमानी त्वचा और आंखों के लिए लाभकारी मानी जाती है। और पलम जो होता है वो पाचन में सहायक होता है। वहीं ककड़ी खीरा और तरबूज शरीर को प्राकृतिक ठंडक प्रदान करते हैं।
1: कैसे समझाऊं?
0: इन सभी फलों में मौजूद प्राकृतिक जल, खनिज और विटामिन गर्मी से बचाने में मददगार होते हैं।

तो श्रोता, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच तेज़ धूप में से बचने की सलाह देती है, और यही वो समय भी होता है जब शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र सबसे अधिक दबाव में होता है। ग्रामीण समाज में पहले दोपहर के समय थोड़ा सा विश्राम करने की जो परंपरा थी वो वास्तविक में वैज्ञानिक दृष्टि से लाभकारी थी।

आपको अनुरोध फिल्म का ये गीत सुना आपने किशोर कुमार की आवाज में, और बड़ा प्यारा सा गीत, साथ साथ में हमने दे दी आपको जानकारी भी। थोड़ी सी बात रह गई है वो भी कर लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हल्के योग और प्राणायाम भी लाभकारी माने जाते हैं। विशेष रूप से शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर और मन दोनों को शीतलता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी नियंत्रित श्वसन तकनीकों को तनाव कम करने में प्रभावी माना जाता है। और आधुनिक जीवन शैली ने धीरे धीरे मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है। एसी कमरों में जंक फूड और कृत्रिम जो हम पेय पदार्थ पीते हैं उस पर बढ़ती निर्भरता के कारण शरीर की प्राकृतिक अनुकूलन क्षमता जो है हमारी वो कमज़ोर होती जा रही है। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं बल्कि संतुलित दिनचर्या, सही भोजन, ऋतु के अनुरूप जीवन शैली और मानसिक शांति से बनता है। हिमाचल की पारंपरिक आदतें, मिट्टी के घड़े का पानी, स्थानीय फल, सत्तू, छाछ, पेड़ों की छांव में विश्राम, जल्दी सोना और जल्दी उठना केवल सांस्कृतिक परंपराएं नहीं बल्कि पारंपरिक वैज्ञानिक स्वास्थ्य पद्धतियां हैं जो कि शरीर को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। और हम अगर ये सब कुछ खुद ही नहीं समझेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं, देर से सोना, देर से उठना, और फिर आप उन्हें डांटते हैं कि भाई जल्दी उठा करो, तो कैसे उठेंगे? आप करते हैं क्या? अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए और देखिएगा पूरा घर बदल जाएगा। वो एक ऐड आती है ना कि सारे घर के बदल डालूंगा बल्ब, बिल्कुल वैसे ही आप भी बस अब ठान लीजिए कि अब से हमने ये करना है। और हाँ, केवल अपने बारे में बस सोचिए, गर्मी में हमारे पशु पक्षियों को भी तो गर्मी लगती है, उनके लिए भी छत पर थोड़ा सा पानी रख दीजिए, और पशुओं के लिए साइड में अगर आपका घर है या फिर गांव में आप रहते हैं तो कहीं किनारे में एक बाल्टी रख दीजिए भर करके पानी की। ध्यान रखिए बार बार अगर आप घर में ही रहते हैं कि भाई वो गर्म तो नहीं हो गया पानी, उसमें ठंडा पानी डालते रहिए। जैसे कि ठंडा पानी हमें पसंद होता है गर्मियों में पीना, वैसे ही उनको भी पसंद होता है।

फिलहाल इस गीत के साथ साथ आप ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो सुन लीजिए। सहायक आयुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय सेना द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 25 मई को सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक फायरिंग की जाएगी। उन्होंने कोहाला, कछियारी, खोली तथा घुरकड़ी के लोगों से आग्रह किया है कि 25 मई को फायरिंग रेंज के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

लो जी, दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे। ये गीत सुना आपने 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। फिल्म का नाम था शागिर्द। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, वैसे तो अगर हम आज अपने कार्यक्रम में सेलिब्रिटी की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, पर सच बताऊं आज की हमारी सेलिब्रिटी जो है ना वो है कछुआ यानी टर्टल, क्योंकि आज है विश्व कछुआ दिवस। फिलहाल फिर भी आपको बता देती हूँ कि आज की तारीख को जन्म में कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं। सुगंधा मिश्रा, 23 मई 1989 को पंजाब में जन्मी सुगंधा एक बेहद लोकप्रिय गायिका, कॉमेडियन और टेलीविजन एंकर हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती में अभिनय किया और द कपिल शर्मा शो में विद्यावती टीचर के अपने किरदार से देश विदेश में अपनी मिमिक्री और कॉमेडी का लोहा भी मनवाया। नई दिल्ली में 23 मई 1980 को जन्मे समीर एक जाने माने अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता हैं। उन्होंने बॉलीवुड में जन्नत, हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में काम किया है और इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के होस्ट के रूप में वो घर घर में पहचाने भी जाते हैं। अरे हाँ, IPL की बात हुई तो हमें याद आया कि 26 को भिड़ने वाली है बेंगलुरु और गुजरात धर्मशाला की खूबसूरत स्टेडियम में। पर खैर, अभी हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं तो ऋतुराज सिंह, 23 मई 1964 को जन्मे ऋतुराज सिंह बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन के एक दिग्गज अभिनेता रहे। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सत्यमेव जयते 2 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों और प्रसिद्ध TV सीरियल्स में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था टिया वाजपेयी ने। जन्मी थी 23 मई 1988 को। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री और पार्श्व गायिका हैं।

और 1920 को एविल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। और एक प्रसिद्ध कॉमेडी अभिनेता मिमिक्री कलाकार हैं विजय ईश्वरलाल पंवार VIP। 23 मई 1973 को जन्मे, उन्होंने कॉमेडी सर्कस का पहला सीजन जीता था और बोल बच्चन जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन किया। चलिए, इन सेलिब्रिटीज की बात तो हो गई है और अब जानकारी के सेक्शन में एक जानकारी। जैसा कि हमने कहा IPL, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला 26 मई को धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीधे फाइनल में एंट्री मारने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी और ये ब्लॉकबस्टर नॉकआउट मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। और इससे पहले शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। लेकिन इस हार के बावजूद RCB पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है। तो 26 मई को होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी और वहीं हारने वाली टीम का सफर खत्म नहीं होगा। उसे क्वालिफायर के 2 के जरिए फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। और आप सभी को एक और मौका एक और मैच देखने का। चलिए आगे बढ़ें और सुनवाएं अब आपको एक और खूबसूरत गीत, मेरे जीवन साथी, फिल्म का नाम है गीत को गाया है आशा भोसले ने। वैसे अक्सर आप इसे सुनते तो रहते ही हैं मेरे कार्यक्रमों में।

तो श्रोताओं, आपको साथ साथ में एक जानकारी देते चलें, क्योंकि कार्यक्रम में समय हमें लग रहा है कि अब कम होता चला जा रहा है। तो धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की ओर से रविवार यानी संडे को ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित कार्यक्रम की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आमजन को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ वर्ष 2030 में भारत के प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति जन समर्थन तैयार करना है।

तो साईं धर्मशाला के असिस्टेंट डायरेक्टर जेपी साहनी ने बताया है कि संडे ऑन साइकिल अभियान में 100 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षु और स्थानीय प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा और इस दौरान योग और स्किपिंग रोप्स का आयोजन भी किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2010 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया जा चुका है और अब 20 वर्षों के बाद भारत में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जबकि 2036 की ओलंपिक गेम्स की मेजबानी प्राप्त करने के प्रयास में भी जुटा हुआ है भारत। तो इस कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। उनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से शामिल रहेंगे। तो श्रोताओ, क्या आप रेडी हैं स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए? और ये जो कल संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें जा रहे हैं आप? और अगर आपको नहीं पता था कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है तो हमने आपको बता दिया ना, तो जाइएगा जरूर। वैसे सच बात बताऊं, मैंने भी स्कूटी जो है ना वो साइकिल के बाद ही सीखी थी, पर अब ना मुझे साइकिल चलाने में बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर लेंगे। और कोशिश पर ही तो दुनिया कायम है, वैसे कहते हैं उम्मीद पर कायम है, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश भी जरूरी होती है। उम्मीद ही लगा के रखेंगे तो फिर कुछ करेंगे नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि भाई हाँ होप तो है ना, तो कुछ नहीं होने वाला।

0: तोहा के लिए गाना ढूंढ रही थी मैं। चलिए अब एक मध्यम मध्यम गति का गीत आपको सुनवाते हैं।
1: प्रेस द बेल।
0: जब जब फूल खिले फिल्म का नाम, आवाज है लता मंगेशकर की। इसके साथ आपको कछुए के बारे में भी बता दें, शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी इस दिवस को मनाने की।

और इस संस्था की स्थापना 1990 में सुसान डैलम और मार्शल थॉमसन नाम के पति पत्नी ने की थी, जो कछुओं के लिए अवैध व्यापार और उनके संरक्षण के लिए काम करते थे।

कछुए तो पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं। ये लगभग 10 से 12 करोड़ साल पहले से धरती पे मौजूद हैं। यानी इन्होंने डायनासोर का दौर भी देखा है। और अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। कछुओं की कुछ प्रजातियां 150 से लेकर 200 साल या फिर उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। टर्टल ज्यादातर पानी, समुद्र या नदी में रहते हैं। उनके पैर तैरने के अनुकूल होते हैं, यानी फ्लिपर्स होते हैं, और वहीं पर टोटोटाइज जमीन पर रहते हैं और उनके पैर छोटे और गद्देदार होते हैं।

भारत में कछुओं की लगभग 29 प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया भर में कछुओं की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कई विलुप्त होने की कगार पे हैं। भारत में ओडिशा के तट पर आने वाले ऑलिव रिडले कछुए अपने सामूहिक घोंसलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।

0: जब जब फूल खिले फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नजर। देखिए, सबको जीने के लिए थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान ही तो चाहिए होता है, और चाहिए होती है सर पर एक छत, यानी रोटी कपड़ा और मकान। और हर जीव जंतु जो है उसे भी वही चाहिए होता है, एक मकान को छोड़ करके वो अपना रहने का तरीका जो है वो खुद ब खुद देख लेता है कैसे करना है। पर खाना और पानी तो सबको चाहिए। और हाँ भाई, हम ये भी भूल गए, कपड़ा भी सबको नहीं चाहिए होता है।
1: दिन को बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन।
0: लेकिन अब जो धरती पर है उसे वो अच्छे से रहे, ये इस बात की जिम्मेवारी भी तो हमारी ही है, हमारी अपनी भी और बाकी जीव जंतुओं के लिए भी। तो समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, कछुओं के अंडे और उनके शैल यानी कवच की अवैध तस्करी, और समुद्री जहाजों के जालों में फंसना इनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है।

तो ये प्लास्टिक बैग या फिर स्ट्रॉ समुद्र और नदियों में जाकर के कछुओं के पेट में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना इनकी सबसे बड़ी मदद होगी। कछुओं को अवैध रूप से पालतू जानवर के रूप में बेचना भी कानूनन अपराध है, तो ऐसे व्यापार को बिल्कुल भी बढ़ावा न दें।

अश्रुताओं, कछुआ तो कभी रुकता नहीं, धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन लगातार चलता है। जीवन में सफलता इस बात से नहीं मिलती है कि आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप बिना रुके कितनी निरंतरता से, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कछुआ कभी भी इस बात का दुख नहीं मनाता कि वो चीते की तरह, खरगोश की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, वो अपनी गति से संतुष्ट रहता है। हमें भी दूसरों की प्रगति देख करके अपनी क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। और सबकी अपनी रफ्तार और अपना सफर होता है।

तो दोस्तों, रास्ते में रुकावटें कितनी भी भारी क्यों ना हो, यदि आपके कदम कछुए की तरह निरंतर और अडिग हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। और हम भी अब कार्यक्रम के उस सेक्शन पे आ पहुंचे हैं जहां पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस बीच भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा रोजगार सृजन में केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में नया इतिहास रचा है। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि रोजगार मेला युवा रोजगार के प्रति मोदी सरकार की बेजोड़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल युवाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज लोक भवन शिमला में उनसे भेंट करने आए वरिष्ठ लेखक डॉक्टर ओपी शर्मा से बातचीत में कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानीय बोलियां यहां की पहचान, परंपराओं और लोगों की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इन बोलियों का साहित्यिक और लिखित माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मुज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालयी क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
2: हो रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और कॉस्मो फेराइट के बीच, ये एक हिस्टोरिकल है, एक रियल एकेडमिया इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन हो रही है MOU के माध्यम से, क्योंकि कॉस्मो फेराइट एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे कि हमारा ग्रीन एनर्जी सेंटर है यहाँ विश्वविद्यालय में, उस दिशा में ये जो MOU बहुत कारगर होगा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विपक्ष की अभद्र टिप्पणी से लोकतांत्रिक परंपराओं पर गहरा आघात हुआ है। प्रदेश में तीन चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस संबंध में आज भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक जेसी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी शामिल थे। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
3: सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इस दौरान कुमारसेन और कोटगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
4: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख 5:30 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: तो श्रोताओं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम में रह गया है थोड़ा सा समय, तो अब कार्यक्रम को इसी गीत के साथ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए ज्योति पठानिया को। और इस गीत के साथ ये भी याद रखिए कि जो भी दूसरों की हिमायत करता है यानी कि उनके बारे में सोचता है उसको प्रभु ईश्वर खुद ब खुद ही इतनी सारी नवाजिशें दे देता है कि वो शुक्रिया अदा करते करते भी थक जाता है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली
6: हाँ?
7: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
2: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
2: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
4: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
5: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: जैसे
1: क्या करना,
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 Wi-Fi सुविधा, घर जैसा सुरक्षित

0: और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर चला।
1: अप्पा अप्पा ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकलें तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को

0: कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।